गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदानाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले।

रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जनसी, माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। ज्यों तिस भाव

तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल।

सब नीत्याया जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया।

संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत।

काचीन तनह पेव आप अपनी बुद है जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो राव कही फूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पायो संक्र इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम

समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारी, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा।

जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कन्हेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटह जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासु कीते काल कंटु कुमारिया।

जाहि पहु जल बिखम असगाहौ गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम भगवान।

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिना दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा सचे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। गुरगद्दी ते विराजमान दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जियां का कोटान कोट शुक्र है पातशाह जी अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो महाराज जी। आप जियां दे पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहुजे विखे महाराज जी शामा दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना दे विच महाराज जी आप जी दीआं प्यारियां गुरसिख संगतां ने संगती रूप दे विच श्री सुखमणी साहिब जी दे संपूर्ण पाठ कीते महाराज जी। उपरांत संध्या वेले महाराज सोदारू रहराज साहिब दी बाणी दा पाठ होया महाराज जी। बाणी पढ़दिआं सेवा करदिआं विचरदिआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा कर देणी बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान करनी बाणी दा भाव समुची संगत दे हिरदिआं ते वसाउणा बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचाउणा सिखी से दुख केसां सुआसां संग निभाउणा पातशाह जी। अमृत वेले तो लैके संध्या वेले तक महाराज जी आईयां दाराईयां संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दीआं दातां तंदुरुस्ती दीआं दातां बख्शिश करनियां जिन्हां भावनावां नूं लैके महाराज जी आप जी ने गुरसिख संगतां ने आप जी दे चरण परसे गुरमत अनुसार भावनावां संपूर्ण करनियां अपने चरण कमलां दा प्यार दर दी सेवा बख्शिश करनी सतगुरु सच्चे पातशाह जी। दर घर दे टहलियां नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करनी भै भावनी सदका महाराज जी अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु जी कोटान कोट शुक्र है चार पैर दिन सुख दा बतीत होया आई चार पैर रहन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करने सरबत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना महाराज जी। आप जी दीआं बख्शियां होईआं दातां विचों महाराज जी कड़ा प्रसादी देग हाजिर है आप जी कृपालता करके भोग लाओ जी भोग लगा शीत प्रसाद साध संगत दे रसनी लायक होवे जो छके सो आप जीआं दा नाम जपे जिन्हां भंडारां चो रस्तां बस्तां हाजिर होईआं भंडारे भरपूर करने काल कंटक चूर करने रस्तां दरगाहों भेजणियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी। आप जी दे दर घर दे प्रीतवान सरदार कुलविंदर सिंह बीबी जसवंत कौर दी देह रोगताली महाराज जी परिवार आप दे चरणां च अरदास करदे ने आप जी ने कृपा करनी परिवार दी महाराज जी अरदास नूं सुणदिआं होइआं महाराज महाराज जीआं नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करनी नाम दा सहारा कृपा करनी महाराज अपने कृपा दे पात्र बनाउणा मेहर भरिया हथ रखणा। बेटा हरमन सिंह गरेवाल दे जन्म दिन दे लई महाराज जी अरदास है आप जी ने कृपा करनी बच्चे हरमन सिंह गरेवाल नूं लंबी आरजू माता पिता दा आग्याकार बनाउणा अपने चरणां दा प्यार बख्शिश करना गुरसिखी दी दात बख्शिश करनी सतगुरु सच्चे पातशाह जी। करो कृपा पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो जी। सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो जो अपने जरूरी काम धंधिया नूं संकोचते हुए गुरुद्वारा साहब आके गुरु की हाजरियां भरिया ने। सतगुरु जी रहमत करन सभना जिया दियां हाजरियां दर प्रवान करके दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दियां दातां दे के सतगुरु जी नवाजण। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार सब तो पहला आरती कीर्तन होवेगा गुरु घर दे हजूरी रागी बहुत ही सत्कारयोग भाई साहिब भाई ओंकार सिंह जी ऊना साहिब वाले आप जी नूं आरती कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। आप जी ने कृपा करके एकाग्रता साहिब गुरु की बणदे कीर्तन सरवण करके हाजरियां सतगुरु चरणा च लवाउणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पावन पंक्तियां जिन्हें भी शरीर महाराज की हजूरी विच बैठे ने मन करके महाराज कह रहे ने गौड़ी महला पंजवा गुरु अर्जन देव जी जिन्हों का मन कीर्तन विच लग जाए जिन्हों का मन शब्द विच टिक जाए समझ लेना गुरु दे दीदार हो गए क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी कई रूहां कीर्तन विचों ही गुरु का दर्शन कर जाती है कीर्तन भगती है कीर्तन बंदगी है इंज कह लईए कीर्तन उस निरंकार नूं मिलण दा सब तो सौखा तरीका है पावन पंक्तियां गाओ सतगुरु तेरा कीर्तन गाइए पर रूह करके मन करके तेरे दर दी हाजरी भरिए जिथे तन आया उथे मन भी फिर सदा जिंदगी तेरे नाम नाल बतीत होवे।

बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे, सुकहु टल गुर सेवियै एह निस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसै गुरु कै जन्म

सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुर जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे दीवाना विच प्यार भावना श्रद्धा अते अदब सहित जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो तंता दे पात्र हो जो गुरु रहमत गुरु प्रेरणा दे सदका सत संगत रूप विच जुड़ बैठ के स्वासा नू जीवन नू सफला बना रहे हो। प्यार सहित अमृत हजूरी विच बैठ के आप जिया ने भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासू अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ समा होया है अमृत बाणी दी लड़ीवार कथा दा। बहुत प्यार सहित आपां धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री मुख तों उचारण कीती गई मलार की वार नूं सरवण करदे आ रहे हां, विचार नाल जुड़दे आ रहे हां। अज 11वीं पौड़ी अते उस दे नाल संबंधित दो श्लोकां नूं आपां ने वचना है। प्रकरण जिवें हर रोज बेनती कीती जांदी है कि मलार राग वर्खा दा राग है, वर्षा रुत विच गाया जांदा है। बारिश दी रुत होवे इस नूं कदे भी गाया जा सकदा है। वैसे इसका रात्रि दा तीसरा पहर समा है। सो गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस राग इस वार अंदर वर्खा रुत दे नाल संबंधित अलंकार खिच के बना करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने अंदर दी खेड़ नूं समझाया है कि जिवें बाहर धरती तपदी होवे, जी जंतु तपदे होन, प्यासे होन, करला रहे होन, तां उत्थे किते मूलाधार वर्खा पै जाए, छैबर मीह पै जाए, ते उत्थों दी सारी कायनात जी जंतु प्राणी जल दे नाल तृप्त हो जांदे ने। उन्हां नूं इक शीतलता मिलदी है, ठंड मिलदी है, प्यास बुझदी है, हरियावल मिलदी है, मैल उतरदी है, मीह दीआं कणियां किन्ने कम सवारदीआं ने। इसे तरह गुरदेव जी ने कृपा कीती है भी ये हिरदा रूपी धरती भी इस तरह तपदी है, कलराठी है, प्यासी है, मैली है। जदों इहदे ते नाम दीआं कणियां डिगदीआं ने, रहमत दा मीह पैंदा है, तां फिर इहदे उत्तों भी मैल उतरदी है, इहदी तृप्ती हुंदी है, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਬੀਹੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਬੀਹਾ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਬੀਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਛਿੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

साहिब सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तीसरे गुरदेव जी एक कृपा करदे ने बाबीहा बाबीहा भाव मन नूं आवाज है पंछी है एक उन्हूं पपीहा भी कहा जांदा है बाबीहा भी कहा जांदा है चात्रिक भी कहा जांदा है सारे नावां दे नाल बाणी विच उस नूं दर्ज किया है। यह बिंब है प्रतीक है बाणी दे विच बहुत बिंब ते बहुत प्रतीक वरते गए ने ते जानवरां दे गुण ते औगणां दे नाल मनुख दे गुण ते औगणां नूं दर्शाया गया। जिवें हुण बबी है यह प्रतीक कादा है इनू प्यास लगी है स्वांती बूंद दी हालांकि पानी धरती ते बड़ा है पिछे आपां सरवण करके आए हां गुरु साहब ने कहा जल ही मह तेरा वास है पानी दे विच तेरा वास है पर पानी दे ना ही तेरी प्यास नहीं बुझदी क्योंकि उन्हूं अंबरी बूंद चाहीदी है स्वांती बूंद चाहीदी है। यह प्रतीक किस गल दा हुण बबीहा एक जिग्यासु मन दा एक जिग्यासु हिरदे दा कि वह संसार दे विच रह रहा पदार्थां दी कोई कमी नहीं साधना दी कोई कमी नहीं सुखां दी कोई कमी नहीं पर उहदा चित नहीं लगदा इन्हां चीजां च उदी प्यास नहीं मिटदी इन्हां चीजां दे नाल पानी नाल ही इस पानी नाल ही उदी प्यास नहीं मिटदी उन्हूं कोई रब्बी अरशी बूंद चाहीदी है ते इत्थे अरशी बूंद दा भाव है वाहिगुरु दी रहमत दी कणी मेहर दी कणी नाम दी कणी। तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह दतार जी ये कृपा करदे ने हे जिग्यासु मन हे बबीहे वर्गे मन ये जगत संसार दे विच तू रह रहा है ते मता किसा इस भरम विच ना रही।

0: नानक दास सदा कुर्बानी।
1: बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लें के आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावे ताए सब थाई होए साए दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वहाई देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारे दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां स्वासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रहत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाओ दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जो श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणियां दे माण मिताणियां दे ताण नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज धन गुरु नानक साहिब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन धन शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी चार पहर दिन सुखां दा आप जी दे बाणी अंदर बतीत होया महाराज जी अमृत वेले तो दर्शन बख्शिश कर रहे हो श्यामा दे दीवाना विच सोदर रहरास आरती शब्द चौंकी गुरमत विचारा अते कीर्तन दियां अमृत वरखा होईयां गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह आप जी की हजूरी विच विचरदियां आप जी के दर दे कीर्तनियां सेवादारां पासों कोई भुल चुक हो गई होवे बख्श लैना महाराज जी। संगतां आपो अपने घर बैठे गुरु घर तो लाइव कीर्तन सरवण करदियां गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा कर रहियां हन महाराज जी सब दियां हाजरी प्रवान करना भाई सतनाम सिंह वाहिगुरु जी का शुकराना करदियां गुरु घर वास्ते $100 माया भेट करते हैं महाराज जी अरदास बेनती प्रवान करनी जोगिंदर कौर के बच्चे निमरत बाजवा अते खुशदीप बाजवा बच्चियां दी पढ़ाई विद्या लई चढ़दी कला लई अरदास बेनती गुरु घर लई बेअंत माया भेटा करते हैं महाराज जी सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनिया मन दियां शुभिच्छावां नूं भाग लगा लो बेअंत संगतां तुहाडे दरबार दियां हाजरियां भर रहियां ने महाराज जी आप जी के दर दे कीर्तनीए आप जी के दर दे सेवादार टहलियां दे सब दे दासरियां दे सब दे कारज राज करो सब दे घरां परिवारां विच सुख वरताओ आपसी तालमेल बनाए रखना गुरु गरीब निवाज पंथ दी सदा चढ़दी कला चोर ते निशान रहे पंथ महाराज के लागते दीवान रहे सदा गुरु महाराज के ऐसी बख्शिश बनाई रखना महाराज जी। इस वेले पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलण दी समर्था सही गुरमुख प्यारे मिलने जिन्हां मिले आप जी दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

पार होए सब मिलेंगे, खंडा जाके हाथ में कलगी, सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी धर, सो हमरी रक्षा करे। बोले सो निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

लखंड लखंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलि मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडावत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले जुबै दुख पावे है, जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अब नासी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम धार टीक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। रा गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आ गया बसन सुहेला। आवत घटै तिन सरैणारे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावै एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो।

अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो के तठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत धरै, तब कवन निडर पवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो के सो होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप हो आप ही अचरजा, नानक आपन रूप हो आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पात होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कवन त्रि बतावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जह सर्व कला पे प्रवीण, तह वेद कतेव कहा को चीन। जब अपन आप उर तहरै, तौ सगन अप सगन कहा बिचारै। जह अपन ऊच अपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा। बिसमन बिसम रहे बिसमाद, नानक अपने गत जन हो आप। जह आशल अशेदा भेद समाया, उहां किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तेहो गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जह अपन आप पति यारा, तह कौन कथाय कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पाहूचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहो गुण मैं कीनो बिस्थार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार की बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोच तौ नानक एक। जह अब गत भगत, तह आप। जह पसरै पासार संत प्रताप। दोहु पाख का पे तनी, उनकी सुभा उनहु बनी। आपे कौतुक करे आनंद जोज, आपे रास भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगणत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टारु। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आपे एको आप बिसथारु। जा तिस पावे तां सृष्टि उपाए, अपने पाण लै सुमाए। तुम ते भिन्न नहीं किछु होए, अपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जी जंतर सब ताकै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मन हो बिसारै। तिस ताज अवर कहाँ को जाए, सब श्रेक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामे रहो व्याप। प्रत पालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथि जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तूर पय निर्वैर, आन दिन पूजै गुर के पैर। लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।
साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ, आठ पहर प्रभ पीखु नेरा, मिटय अज्ञान बिनसय अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसा किस साच परीखिया, मन तन नाम जपो लिगलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए, साच वापार करो वापारी, दरगा निभाए केप तुम्हारी, एकाटे करखु मन माहे, नानक बहुर ना आवै जाहे, तिस ते दूर कहा को जाए, उबरै राखन हार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुचन हार, सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हार रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोहत निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, सलूक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाशो, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगासो, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समय गिरी एकश घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद आन हत तह नाद, कहन ना जाई अचरज विस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट ब्याप रहया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंत्र माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरत मैं देखो, ससी अर सूर नखियत्र मैं एको, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबहू डोले, सर्ब कला कर खिले खेल, मोल ना पाइय गुण है अमोल, सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, धार रहे ओ स्वामी ओत पोत, गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो बिसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुनै शुभ बचन, सर्ब व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देखो सब मोही, आप सतु किया सब सतु, तिस प्रभ ते सगली उत्पात, तिस भावे ता करै विस्तार, तिस भावे ता एकंकार, अनेक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखन हारा, सगल समगरी जाका तना, आपन जासो आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मध अलिप तो रह, जो किश कहना सो आपे कह, आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता लए समाए।
इस ते होए सो नाही बुरा उरै कहो किने कश करा आप भला करतूत आतनी की आपे जाने अपने जी की आप साचो तारी सब साचो ओत पोत आपन संग राचो ताकि गात में तो कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नानक एहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का ई है सुआउ जन कै संग चित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेशो पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरहो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागहो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर धन के लिहो पंड हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तर लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जापै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निबही के पहमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहो तिने दान सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न हो वै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नावनिद बुद्ध ज्ञान सर्बत है सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता सामदारसी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताती गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हरे नाम गोबिंद भगत कै मन बिश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै

है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख हो हे ता इक न चलै नाल, किव सुचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इक ना हुक्मी बख्सीस इक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जीव

कथना कथि नया वैतूट, काथ काथ कथि कोटि कोट कोट, देदा दे लैदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे परवाहु, साचा साहिब साच नाए, भाख्या पौ अपार, आखह मंगह देह दे दात करे दातार, फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार।

नाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लू पाताल सुने पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुक्सा लाहन मंद सुने जुग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश

तिष्ठे हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कव

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै चंतव प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के हे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गनि जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रया चंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लिखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ठाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुएकै नमस्तंग निकै नमस्तंग अभूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरदाते नमस्तंग निरगाते नमस्तंग निरदूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग सोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग तापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गम्मे नमस्त सरम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजबे नमस्त सजबे अदेशंग देशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तेयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वभोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी चंतव प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपीक है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है विरेक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो वस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो कूप कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दूर्द अर्धंग गंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अभेदी अनामंग कामं समस्तोपराजी समस्तस्तुतामं तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु है आजू है आदेश है अपेश है भुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चरपट चंद्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकाल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंत्वा प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुर कपारु सर्व मंत्रि मान देव पेवा दुदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसालो नाम ठाम न जात जाको रूप रंग नरेक आद बुरकुदार मूर्त जौनाद अशेक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम हीन पेखता मुह न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सुदय मान तुताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिरेक

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर पर भंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तल मुदाम अनछेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिशविष अपांड जल थल महंत दिशविष जयंत अनुभवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनछंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अंडठ पार आडीठ धर्म अत टीट कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद त्व प्रसाद करुणालय है अर्काल्य है कलखंडन है मह मंडन है जुगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तृत के धरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजप जप है तप तप है कृता कृत्य मृत्या मृत्य मृत्या मृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तृत्य अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य मृत्या मृत्य जप कृत्य मृत्या मृत्य नरनायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरनालय है नृपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासुंताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अफय अभय अपू अजू अनास अकाश अगांज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनामो काम गाह अटाह अनाथि परमाथे अजो नियमो निनरागे नरंगे न रूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय विगनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते सर्व

साध सुवैये श्रावक शुद्ध समूह से दान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माध्यम तंग जरे जर संग अनूप तंग।

कुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी बजान के भूप भले पित न्यावत शीस न जात बिचारे ते भय तो कहा पै भूप तंत को नागे पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजित गूट गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसा सुनांदर जान दलेंगे भारी मान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तूर अरिन मरूर मुआसन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बडे बरे आर अवचार सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचिक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक जपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे ये नर श्रीपत के प्रसह भगते नर फिर न दे तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिरो लिये सास समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो भक्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूँ सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभायो काहू लै बाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।

आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिनका मुँह तुट्टा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया, कह नानके आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सूजन दे जिसनो, कूर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिर है दा दिस एक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हुआ कत की करह कहानी कत केरी कित द्वारे पाईए, तन मन धन सब सौप गुर को हुक्म मन्ने पाईए, हुक्म मन्ने हूं गुरु के रागा हु सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथे हो अकत कहानी, ये मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जिनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाइयै, ऐसा काम मूले न कीचै जितंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगुचरा तिरंत न पाया, अंतु न पाया किने तेरा अपना तू जाने, जी जन सब खेल तेरा क्या कुआ कवकाने, आखैता वेखै सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया, सुर नर मुन जने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तू दु पायक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नान जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता कीरी बिक मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, कन्हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास सुना सुमानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारै सुख पावे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावे, ओ सुहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया है तिन कै मन वसिया, जिन तुरो लिखिया आया कि फिरै कनेरे करह गल्ला, गली किने न पाया कह नानक शब्द सुहेला, सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सह सुपे संगत सुभाइया, कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए, सहसै जीव मलीन है कि संयम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागू हर स्यो रहो चित लाए, कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए, जी हो मैले बाहू निर्मल जी हो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारे आए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर हैं ज्यों बेतालिया, कह नानक जिन सत तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारे आ, जी हो निर्मल बाहू निर्मल बाहू ता निर्मल जी हो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचै नाही मनसा सत समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा संभाले, आप चढ़ सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जे को गुर तेवे मुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछ बिभेकियां जाए
अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म

है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वकाणी, हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी, कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ सुमाऊ, शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाऊ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ, शिव सकता पो पाए कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आविखै गुरमुख सै बुझाए, तोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै कस्यों लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी, गुरु बाजो तत्तै सार न जानी, तेहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, जिसनु वंदन हर लिव लागै जागत रहन विहानी।

ब्रह्म प्रभ पाया पुत्रे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक।

सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ दसों पातशाह की आत्मिक जोत हाजरा हजूर साहरा जहूर चवर शतर तख दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवास सतगुरु जी आप जी ने रहमत कीती तरस कीता अमृत वेले दे जागने बख्शिश कीते अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाश मान हो करके समूह संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते नदरो नदरी निहाल कीता आप जी का कोटान कोट धन्नवाद है।

गुरु गुरी निवाज अंतर जामे सतगुरु जी तन तन सहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी ज्योत हजर हजूर आप जी दर दी हाजिरी पढ़दे हां बेअंत गुरसिख माई भाई वालों आप जी दी बंदे सत्कारो जो बेअंत माया पिता गुरदेव जी ने सारण सिखी दान भरोसा दान चरना कमना प्यार बख्शना खजाने प्रपुर आओ गुरु प्यारी सत्संग जो कीर्तन दी इनिक हाजिरी प्रवान करनी हुई भुलो चुका खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करी सत्कार योग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी उन्हों पासों अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करी दास वालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन एहु रचन रचाया तिस ही माहि समाहि पौड़ी सपल्यो बिरख सुहावड़ा हर सफल अम

दसन संत प्यारिया सुन हो लाए चिता, जिस लिखिया नानक दास तिस नाऊ अमृत सतगुर दिता। श्लोक महला पंजवा। कबीर धरती साधकी तस्कर बै सहगाहे, धरती भार न व्यापई।

जिनी सच तू डिठा जिसनो तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे नानक निर्म

पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अगन आप सो नाम त्याए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यों रंग लाए।

ही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस्क

रस अमृत खीर के आली, गुर सिखा के मुख उजले, मन मुख थिए पराली, पए कबूल खसम नाल, जां काल मर्दी काली, माता खीवी सहो सोए, जिन गोए उठा।

ब्रह्म अगन तन जारी रे, मुद्रा मतक सहज धुन लागी, सुख मन पोचन हारी रे। तीरथ वर्त नेम सुच संजम, रव सस गहने देउ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहु महारस पेउ रे। निचार धार चुवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछे, एह महारस साचू रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पाओ पाठी।

नरक के घोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो राधे हम काहू की कान न कटते।

आपन ऊच नीच कर भोजन, हठे कर्म कर उदर पर है। चौदस अमावस रच रच मांग है, कर दीपक लै कूप पर है। तू ब्राह्मण मैं कासिक जुल्हा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बन है। हमरे राम नाम कह उबरे, वेद भरोसे पांडे डूब मर है। तरवर एक अनंत डार साखा, पहुप पत्र रस परिया, ये अमृत की बाड़ी है रे।

की पाऊ भगत नहीं साधी रहाऊ पर धन पर तन परति निंदा पर अपबाद न छूटे आवागो आवागवन होत है फुन फुन इहो प्रसंग न टूटे जिह घर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मत वारे तिन

दया धर्म अर गुरु की सेवा हे सुपनंतर नाही दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बच्छल पहहारी कहत कबीर पीर जन रखहु हर सेवा करूं तुम्हारी जेहे सिमरन।

अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन बाहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहे।

राखियले मन राम नामा बिदियले जैसे कनिक कला चित मांडियले रहाओ आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है चीत सोगा गर राखियले।

कार मह अनहद बेन बजाओ गो, अनहद बेन बजाओ गो, बैरागी रामह गावो गो, शब्द अतीत अना

चंद सूरज दोए सम कर राखौ, ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो। तीर्थ देख न जल मैं पैसौ, जी जंत न सताऊंगो। 68 तीर्थ गुरु दिखाए, कट ही पीतर नाऊंगो। पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो।

तह बाजे शब्द अनाहद बाणी, तह चंद ना सूरज पावन न पानी, साखी जागे गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत छीजै, अमृत रस गगनंतर पीजै, इस कला जो जाने पेउ, पेटै तास परम गुरदेउ, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी।

जागत रहे सो कबहू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनवा उल्ट सुन मह गह, जागत रहे ना

जिस समय का इंतजार सी, बच्चा और बच्ची, पति ते पत्नी, महाराज दी पूरन गुरु मर्यादा अनुसार बच्ची चरणप्रीत कौर, डॉक्टर ऑफ सरदार बलबीर सिंह जोहल, बीबी मनवीर कौर, विद काका लवजोत सिंह कलीरा, सन ऑफ सरदार राजेंद्र सिंह, बीबी मनजीत कौर कलेरा, दोवें परिवारां नूं लख लख लख लख वधाइयां दा शब्द गावांगे। महाराज सारी जिंदगी दोवें परिवारां दा, बच्ची बच्चियां दा तालमेल बना के रखे। आओ दसरियां वालों, समूह गुरु घर की कमेटी वालों आप सारे परिवारां नूं लख लख भैणां नूं वीरां नूं सब नूं वधाइयां।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेंते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै धाए। सब थाई हुए सहाय। दसवें